दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के से लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रेम डायरेक्टर विनेश। जी हां, ये सैटरडे है। अगर क्राइस्ट चर्च में आप हो तो आपको तो पता है कि वेदर बहुत ही सुहाना नहीं है। इट्स क्वाइट सैड एंड क्वाइट बैड, और ठंड भी है और बारिश भी हो रही है, लेकिन आई एम श्योर यू आर कीपिंग वार्म। जी हाँ, थोड़ी ठंड भी है, वैसे भी हम कंप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ऑफ कोर्स इन विंटर। तो आप चाय पीजिए, बड़ा भजिया खाइए खाइए और अपने आप को गर्मी रखिए और एंजॉय करते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, लिसनिंग टू अस। और जो लोग हमें फेसबुक में हर वक्त देखते हैं, देन वी विल बी कमिंग ऑन फेसबुक लेटर। थोड़ी देर में हम फेसबुक पे आने वाले। हमारे जो गेस्ट आज के हैं, दे आर गेटिंग इन द स्टूडियो। जी हाँ, हम आप हमें सुन रहे हैं फ्रॉम प्लेन से मीडिया मद्रास स्ट्रीट इन क्राइस्टचर्च। तो लोग जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे बातें करते चलेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जिसके विषय में बात करने वाले हैं, इट्स अ बांसुरी, अ टेल ऑफ लव। जी हाँ, जो टिकट्स आर देयर सेलिंग फास्ट, जो इवनिंग जो टिकट्स इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट, और जो कुछ टिकट्स बचे हुए उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ और जानकारी भी आपको देने वाले हैं और जो लोग इनसे जुड़े हैं उनसे भी हम बात करते चलेंगे। इट इज Proudly presented by Kathakar Charuji, she is a teacher jo Christchurch mein hai, and she has got many students. Or this is I think one of those rare occasions ki aapko milega dekhne ke liye such a production, and you don't want to miss out. So it's happening on the 12th of September. It's not far off. Agar apne ticket nahi liya, then it is time that you buy the tickets, kyunki kuch tickets bache hue hain. If you are late, then you might miss it. To chalo hum aage badhte hain. Hamare paas kuch songs bhi hai jo hum aapko सुनाते चलेंगे, और साथ साथ में कुछ और जो जानकारी हमारे हाथ में लगेंगे उसके विषय में भी हम बताते चलेंगे। कुछ और भी प्रोग्राम है, हरियाली तीज जैसे आपको पता है वो भी आ रही है, जो शालिनी गुप्ता का जो टीम है हर वक्त हर ईयर लाती है। तो दिस टाइम इट्स हैपनिंग ऑन 22nd अगस्त, विच इज़ आई थिंक अ वीक अवे, और देर इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन टेम्पलटन। जी हाँ, टेम्पलटन हॉल, विच इज़ वेरी पॉपुलर, जो 64K क्राउड में, वहाँ भी आप जा सकते हो। इट्स अ फ्री एंट्री एंड इट्स फ्रॉम 5:30 PM टू 8 PM, सो देर इज द अदर इवेंट जहाँ पे आप जा सकते हो। और भी काफ़ी जो प्रोग्राम हो रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली द नंबर्स आर ग्रोइंग, हम और भी जो इवेंट्स देख रहे हैं, मेनी प्रोग्राम्स आर हैपनिंग। जस्ट कीप इन टच है जो सफीजी रेडियो पेज पर, हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हम उस पर डाल देते हैं फॉर यू टू नो, सो दैट यू डोंट मिस आउट। मुझे पता है कि भाग दौड़ में काफी बिजी होते हैं, पीपल मिस इट, एंड देन बाद में आप जो फोटोज वगैरह देखते हो देन आपको पता चलता है कि इवेंट हो गया है एंड यू हैव मिस्ड इट। और हम बधाई देने चाहेंगे सभी लोग जो आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मना रहे हैं, स्पेशली इंडिया गेनिंग द 80th ईयर हो गया है, सो सभी को हम बधाई देंगे। आज ही हम सुबह गए थे द सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज बाय हितेश जी, इट वॉज ब्यूटीफुल, काफी अच्छा। It was in Richmond, and we are hoping कि आप सभी लोग having a good time. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, सॉन्ग कुछ सुनाते हैं, उसके बाद में जैसे हमारे जो गेस्ट जुड़ जाएंगे तो हम उससे भी हम बात करते चलेंगे।

जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फिजी रेडियो. आशा है कि आप मजे ले रहे हो हमारे प्रोग्राम को. और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस फॉर द लास्ट 14 इयर्स. हमें भी आपका साथ बढ़िया लगता है और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ में. और जैसे हमने शुरू में मेंशन किया है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बांसुरी, अ टेल ऑफ लव. जी हाँ, हम कृष्ण राधा की बात करने वाले हैं. और हमारे साथ है कुछ कुछ जो गेस्ट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो मोनिका जी है एंड वी आर गोइंग टू वेलकम नीलेश एंड आदर्स. जैसे जैसे वो आएंगे हम उनको भी वेलकम करेंगे और फिर हम जाएंगे फेसबुक लाइव, जहां पे आप हमें देख भी सकोगे और सुन भी सकोगे. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग टिकट्स. जी हाँ, टिकट्स आर गोइंग क्वाइट फास्ट एंड वी डोंट वांट यू टू मिस इट. इसलिए हम चाहते हैं कि आप ग्रैब कर ले टिकट अभी, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि बाद में लोगों नो वी कम टू देम एंड दे डिडंट रियलाइज कि ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है. सो प्लीज डू लिसन एंड गेट योर टिकट्स व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज देयर. तो चलो हम आपको और एक जो गीत सुनाते हैं और उसके बाद में होपफुली एवरीबॉडी सी एंड देन वी विल start with our interview.